0: सभी सुनने वालों को, सखियों को, सहेलियों को, सखाओं को, सभी श्रोताओं को और दीपा तुमको भी प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल, सभी हमारी सभी सुनने वाली सखियों को, श्रोता भाइयों को, दीपा माहेश्वरी का, चंचल तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: और भी शुभकामनाएं मैंने तुम्हें दी, तुमने मुझे नहीं दी ना सुनने वालों को।
1: भाई देखो, दी ना नमस्कार, दिए ना भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से अपने परिवार का, खुद का खूब अच्छा ध्यान रखिए।
0: और कल हम ये शुभकामनाएं क्यों दे रहे हैं भाई, कल से जो उत्सव की धूम शुरू है पूरे देश भर में।
1: जी हाँ,
0: और ये उत्सव है नवरात्रि का, जो पूरे 9 से 10 दिन तक देश में यूं ही कहते हैं ना, रंग बिरंगी रौनकें नजर आएंगी, खूब सारी लाइटें होंगी, खूब सारा नाच गाना होगा, पकवान बनेंगे, वहीं जो बहुत सारे लोग हैं उपवास करते हैं, जहाँ पूजा पाठ का महत्व है, वहीं नाच गाने का महत्व है, उजाले का महत्व, बहुत सारे रंगों का महत्व।
1: और देखो ना, ये पूरे नवरात्रि के 9 दिन, हर दिन को एक रंग समर्पित कर दिया गया है ना, जैसे आज का रंग है सफेद। पता है श्रोताओं, आज ऑफिस में यहाँ पर विविध भारती में ज्यादातर लोग सफेद कलर के कपड़े पहनकर आए, बड़े प्यारे लग रहे हैं, सब एक दूसरे को देखकर एक स्माइल दी। उसके अलावा बाहर भी जब हम घर से दफ्तर तक आ रहे थे तो बहुत सारे लोग सफेद या उसके कॉम्बिनेशन में कपड़े पहने हुए, और कई सारे लोग तो इन दिनों में चप्पल या कुछ किसी भी तरह का,
0: बिल्कुल चप्पल जूते भी
1: नहीं पहनते हैं, उस तरह के लोग भी दिखे। और जी हाँ,
0: उनकी अपनी मान्यताएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, अपनी अपनी भक्ति करने के तरीके होते हैं लोगों के। बाकी सुबह का जो समय होता है ना, हर घर से, अमूमन हर घर से आरती की ध्वनियां नजर आएंगी, तो वहीं जब शाम के वक्त हम निकलते हैं तो जो बहुत बड़े बड़े गार्डन हैं या सोसाइटी हैं, बिल्डिंगे हैं, सब जगह पर बहुत ऊंची आवाज में जो गरबा के धुनें जलती रहती हैं, वहां थिरकते छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के स्त्री पुरुष बच्चे सभी नजर आते हैं। और अभी जहाँ हम एक रंग में देख रहे हैं, वहाँ रंग बिरंगे रंग भी हमें नजर आएंगे, रंग बिरंगे परिधान में भी, और वही सफेद रंग में भी बहुत सारी महिलाएं पुरुष हमें नजर आएंगे। तो ये माहौल ही ऐसा होता है,
1: माहौल ही कुछ ऐसा है, खुशनुमा हो जाता है, सकारात्मक रहता है, हर जगह पॉजिटिविटी रहती है। और आप किसी को जानो या ना जानो, एक चेहरे पे मुस्कान जो हम एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, वो बड़ा प्यारा लगता है ना।
0: बिल्कुल, चाहे वो कहीं कीर्तन भजन चल रहा हो घर में, या शाम को गरबे का समय हो, हम जब देखते हैं ना भक्तिमय माहौल में और नृत्यमय उत्सवमय माहौल में हम डूब जाते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, ऐसे माहौल को हम बनाए, गीत सुने?
1: बिल्कुल, वो माहौल थोड़ा बना रहना चाहिए, है ना।

0: तो भाई दीपा, नवरात्रों की धूम तो है, लेकिन अब कार्यक्रम में आगे बढ़ना है नवरात्रि की बात के बाद में, तो हम बताएं कि आज किन विषयों पर हम बात करेंगे। तो छोटी छोटी सी कुछ आदतें होती हैं, हम सब में होती हैं, लेकिन जब उनमें बदलाव करना पड़ता है तो उनके जो परिणाम आते हैं वो बड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, बदलाव कैसे? सकारात्मक बदलाव।
0: हाँ
1: भाई, बदलाव तो कैसे भी हो सकते हैं। अब आप कहें कि भाई कोई दिन भर बहुत सक्रिय रहता है और अचानक से आलसी बन जाए, तो वैसे वाले बदलाव नहीं होने चाहिए। ये बदलाव पॉजिटिव वे में होने चाहिए और तभी तो देखिए हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। और इसीलिए बात हम करने चले हैं, विश्व गठिया दिवस पे भी हम छोटी सी बात करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: उसके बारे में क्या जरूरी है जानना।
0: बिल्कुल, जब उम्र बढ़ती है तो सभी को कहीं ना कहीं ये जो गठिया है या अर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, इसकी समस्या आ ही जाती है। तो कैसे पहचाने, क्या बचाव करें, थोड़ी सी इस पर बात होगी। एक और खास दिवस है, वो है राष्ट्रीय स्वतंत्र विचार दिवस, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा होगी। और अभी सोमवार में हम ले रहे हैं छत्तीसगढ़ के व्यंजन। तो आज जिस खास व्यंजन की हम बात करेंगे, देखिए वैसे तो उपवास के दिन भी है नवरात्रि में, लेकिन जो उपवास नहीं कर रहे हैं, सब तरह से खा पी रहे, वो इन पकवानों का जरूर से मजा रहे। तो छत्तीसगढ़ में खासतौर पर जो चीजें बनाई जाती हैं उन्हीं में से एक है फरा, या इसे मुठिया भी कहते हैं, और एक है अंगाकर रोटी। इनकी बात आज होगी।
1: बिल्कुल, कैसे बनती है, क्या खास है, वो सब हम जानेंगे। और भाई कुछ मैं कहूँ, कुछ
0: तुम कहो। बात तभी बनती है ना।
1: हाँ।
0: कि एक जनाब बोलता रहेगा ना, तो वो बात लगेगा कि भाई कितनी बकबक कर रहा है कि सामने वाले को मौका ही नहीं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन संवाद तभी होता है या बात पूरी तभी होती है जब दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर किसी एक को शिकायत हो तो जो सामने वाला है वो शिकायत को दूर कर दे। जैसे आज एक छोटी सी प्यार भरी शिकायत आई है हमारे एक श्रोता भाई की है शायद, ये कि भाई इस आरंभ हो चुका है सप्ताह का, भाई देखिए हाँ आज तो सोमवार है और माता रानी का दूसरा नवरात्रा है, और आप ही देखिए ना सखी सहेली कार्यक्रम में नवरात्रों के विषय में कुछ भी नहीं है। उपवास, पूजा पाठ या भोजन व्यंजन आदि विशेष तौर पर जो बातें की जाती हैं, और उनको लगता है कि ये तो माता बहनों का डिपार्टमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। माता का डिपार्टमेंट हर एक के लिए है, ये किसी खास तौर पर महिलाओं के लिए नहीं है। और नवरात्रों के उपलक्ष्य में एक विषय अवश्य होना चाहिए, तो ऐसा उन्हें लगता है।
0: ये पूरा सप्ताह जो है वो नवरात्रि की धूम चलने वाली है। अलग से जो हमने विषय जिन पर चर्चा के लिए लिखे, वहां हमने नवरात्रि को नहीं लिखा किसी विषय को, लेकिन आगे आने वाले दिन में ये शामिल होने ही वाले हैं। और जब हमने शुरुआत की नवरात्रि की
1: धूम से की, और आपको देखिए ना एक सुंदर सा गीत सुना करके बिल्कुल

0: भक्ति भाव में आप सब शायद सरोबार हो भी चुके होंगे।
1: तो हमारे श्रोता ने शिकायत तो की है, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत भले हो मन में लेकिन वो नहीं लिख पाए हैं, तो भी शिकायत उनकी दूर हो गई और उन्होंने हमसे शिकायत की, कुछ उन्होंने कहा, कुछ हमने कह दिया, बात तभी होती है। और ये जो जुमला है ना कि कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, बात तभी बनती है दीपा, क्योंकि ये रिश्तों का पूरा व्याकरण है। हम सभी बोलना चाहते हैं और कोई हमें सुने, हम ये भी चाहते हैं। बोलने से गला हल्का होता है और सुनने से मन, कोई जब हमें सुनता है तो हमारा मन हल्का होता है, और बात तभी बनती है जब गला और मन दोनों पूरी तरह से हल्के हो जाते हैं। तो कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, इसका एक मतलब ये भी है कि आपस में बातचीत करना, अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ साझा करना और संवाद का माहौल बनाना। ये केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता दीपा, बल्कि दो लोगों या दो पक्षों के बीच आपसी जुड़ाव और आपसी समझ की बात भी है।
0: बिल्कुल सही कहा, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, इसमें सबसे सुंदर पता है क्या शब्द है चंचल? हम।
1: क्या बात है। हाँ,
0: और जब तक मैं और तुम है ना, तो फिर देखिए बहस है, जहाँ हम आ गया वहाँ बात बन जाएगी, और बात को तुमने क्या किया से निकाल कर हम इसे कैसे ठीक करें, बिल्कुल इसमें तब्दील हो जाएगी, होगी या नहीं होगी?
1: बिल्कुल, और तब बात बन भी जाएगी। और दो लोगों के बीच जब संवाद होता है तो इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे की बात तक रखे, जिसे संवाद का संतुलन जो है वो बना रहे। आपसी जुड़ाव, आत्मीयता अक्सर रिश्तों, दोस्ती या प्रेम में इस्तेमाल होती है। और दो लोग जब अपनी भावनाएं, अपने सुख दुख और अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करना चाहते हैं तो बात तभी बनती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि एक दूसरे को सुनना और समझना दोनों जरूरी है। इसमें केवल कहने ही नहीं बल्कि एक दूसरे को ध्यान से सुनने और समझने पर भी जोर दिया जाना चाहिए, जिससे आपसी समझ और विश्वास मजबूत हो। अब देखो ना, आजकल संवाद का हाल कुछ ऐसा हो गया है चंचल कि एक बोलता है तो दूसरा इंतजार करता है कि पहला कब चुप हो ताकि वो अपनी बात शुरू कर दे। अब देखिए, ये संवाद नहीं है, ये तो भाई मोनोलॉग हो गया है या नहीं दोस्तों? क्योंकि जो आपस में टकरा रहा है, मतलब बोलने ही नहीं दे रहा है अगर दूसरे को, तो फिर वो कैसे आपसी बातचीत हुई? और जब कोई अपनी बात कहना शुरू करता है, उसके पहले ही हम ये तय कर लेते हैं कि सामने वाला गलत है, फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी बात कहे, हमें तो बस गलत ही लगने लगती है। ऐसे संवाद से बात करने के बजाय बिगड़ ही जाती है। तो जब भी बात कहो, साफ कहो, लेकिन थोड़े मीठे अंदाज में कह दो।
1: और शब्दों के पीछे का दर्द भी कई बार हमें जब कोई बताता है तो हम उनसे अनसुना कर देते हैं। कोई हमसे बार बार कह रहा है कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, हम उसके शब्द सुनते हैं लेकिन उसके पीछे छुपी हुई जो कुछ चीज शब्द हैं जो हमें नहीं सुनाई दे रहे कि वो कहना चाह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: ना कहकर भी उसने कहा लेकिन हम इन शब्दों को सुन नहीं।
0: कई बार क्या होता है ना, ऐसा होता है लोगों में कि वो प्रेम भरे शब्द बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते, लेकिन उनके गुस्से में भी वो जो उनके प्रेम को हमें समझना पड़ता है।
1: जब कोई गीत या गजल बनती है ना तो उसमें चार चीजें चाहिए होती हैं, जब भी वो अच्छा लगता है, वो है लय, सुर, उसके शब्द और एहसास। इसी तरह से बात भी जब हम कोई करते हैं तो बात तभी बनती है, उसमें चार सुर होने चाहिए, ठहराव, सच्चाई, पारदर्शिता और विश्वास।
0: बिल्कुल, और जब हम ठहराव यानी मन को शांत कर लेंगे, वहां से बात शुरू करेंगे, तो गुस्से में कहीं की गई जो बात है ना, सच भी हो तो जहर लगने लगती है। लेकिन इसलिए जब आए तो 20-25 मिनट के लिए मौन हो जाएं, यानी आप कभी भी कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो अगर या गुस्से में है तो थोड़ा सा चुप रह जाइए, इससे होगा ये कि 90% बातें तो वहीं खत्म हो जाएंगी।
1: बिल्कुल सही,
0: गुस्से में, क्योंकि गुस्से में की गई बात और फिर देखिए वो बात का कहां बतंगड़ बन जाता, देर नहीं लगती।
1: और जब कोई बात अपनी हमसे कह रहा है तो सच्चे मन से उसे सुनना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आंखें मोबाइल पर हैं, चेहरा उसकी तरफ लगा हुआ है और हम उसकी बात को पूरी तरह से सुन ही नहीं रहे हैं। मतलब उसे दिखा रहे हैं कि हमने सुना लेकिन हमारा ध्यान या तो अपने किसी और बात पर है, हमारे मोबाइल पर है, या उसे बीच में जब अगर हम टोक देते हैं उसकी बात को पूरा होने से पहले ही, तो वो अपने बात कहने के लिए जो अपना मन हल्का करना चाहता है ना, वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो हमें पूरी तरह से समझता है, हमारे मन के भीतर चल रही उथल पुथल को वो पूरी तरह से भांप लेता है और हमसे वो बात करता है। फिर भी अक्सर हम घुमा फिरा के कह देते हैं ना कि कुछ नहीं, सब ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जो तूफान चल रहा है उसे वो हमें समझ लेता है और कई बार बिना कहे ही वो बात, संवाद जो है दोनों के बीच में हो जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, बात करने से ही बात बनती है, खामोश रहने से तो दूरियां पनपती है।
1: और इसीलिए दीपा, ना तुम चुप रहो ना हम चुप रहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और जो उलझी है गांठ दिल में तो बातों

0: की बातों में वो सुलझे।
1: बिल्कुल, संवाद कोई जादू नहीं, आदत है चंचल, और आदत एक दिन में नहीं बनती। हम सब एक अच्छी शुरुआत करें कि हर रोज जब भी समय मिले किसी एक अपने से सिर्फ 5 मिनट बिना सलाह के, बिना जज किए, सिर्फ सुनने सुनाले वाली बातें करेंगे। करके देखिए, मन हल्का लगेगा, यकीन मानिए।
0: बिल्कुल, अब जब ऐसा करेंगे तो आपका मन हल्का हो जाए, हम भी यही चाहते हैं। और सुन लेते हैं गाना।

0: जब बात मन में रह जाती है ना तो उलझने बढ़ जाती हैं, इसलिए मन की बात कह दीजिए और कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, ऐसा होना चाहिए। इसी पर एक बड़ा बहुत अच्छा संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जहाँ एक ही बोले वो भाषण होता है, संवाद नहीं। जहाँ दोनों बोलें और दोनों सुने वहाँ संवाद बन जाता है। बिना संवाद के मन बंद हो जाते हैं। कहने से मन हल्का होता है, सुनने से भी मन बड़ा होता है। और आज की सबसे बड़ी कमी है कि सबको कहना है पर सुनना किसी का नहीं है। इसीलिए ये पंक्तियाँ हमें बराबरी का सम्मान सिखाती हैं कि ना तुम हमेशा सही ना हम हमेशा सही। इसीलिए घर में, रिश्तों में, समाज में अगर हम थोड़ा सुन लें, थोड़ा कह दें तो आधी दूरियां, आधी लड़ाइयां खुद ब खुद मिट जाएंगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह से एक और संदेश है, कह रहे हैं कि साझा अभिव्यक्ति, यानी कि कुछ बातें आपकी और कुछ बातें हमारी, रिश्तों में ताजगी और अपनापन बनाए रखती हैं। जब दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर रखते हैं और एक दूसरे के मन की थाह ले लेते हैं तब विश्वास की जड़ें और मजबूत होती हैं।
0: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि जहाँ ना शब्दों की कोई बाध्यता हो, ना भावनाओं पर कोई पहरा हो, बस मन हो, संवेदनाएं हो और एक दूसरे को सुनने और समझने का सुंदर सा सिलसिला हो।
1: बहुत सुंदर कहा। और एक संदेश और है कि हम किसी से कुछ कहते हैं अपने दिल की बात तो हमारी बात, हमारी बहुत सारी व्यर्थ जो नेगेटिव बातें वो निकल जाती है, पर हम सिर्फ कहें ही नहीं, अगला जो सुन रहा है उसकी भी कुछ बात सुने। परिवार में कुछ लोगों के प्रति कुछ ऐसे विचार आते हैं जो अच्छे नहीं होते, पर अगला कोई आपका दोस्त या प्रिय सुनकर और आपको सुझाव देता है, उन बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए।
0: एक अन्य संदेश में पढ़कर सुनाती हूँ, बड़ी अच्छी बात लिखी है कि एक तरफा बात अक्सर बोझिल हो जाती है और संवाद एक तरफा भाषण बनकर रह जाता है। साझा अभिव्यक्ति यानी कि कुछ बातें आपकी और कुछ बातें हमारी, तो ये अगर होगा तो रिश्तों में ताजगी और अपनापन बना रहेगा।

0: जब दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर रखते हैं, एक दूसरे के मन की थाह लेते हैं, तब विश्वास की जड़ें और भी मजबूत हो जाती हैं।
1: बिल्कुल। और एक संदेश कहता है कि जीवन केवल अपने हिस्से की बात कह देने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को सुनने और समझने की कला भी है। जब हम कहते हैं कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, तो सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहता है।
0: तो भाई सिर्फ हमें ही नहीं कहना है, गीतों के माध्यम से भी बहुत कुछ कहा जाता है, तो सुने गीत।

हम भी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और एक अच्छा सा सुंदर सा संदेश है वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ। हमारी एक सखी लिखती है कि आज विश्व गठिया दिवस है, मैं बहुत लंबे समय से इस बीमारी से ग्रसित हूँ। मैं सारा काम कर लेती हूँ, चल फिर लेती हूँ, अगर मैं एक दो दिन भी नहीं चली तो ये मेरे लिए बहुत ही दुखदायी हो जाता है। इसीलिए आप इसका सिर्फ एक ही इलाज

0: से पीड़ित हैं, लेकिन होता यह है कि 70% लोग इसे बुढ़ापे का दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये बच्चों में भी हो सकता है।
1: सही कहा दीपा, और कई तरह का गठिया रोग होता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, इसमें सबसे आम तौर पर ये सबसे आम है, और लगभग जब 40-45 की उम्र होने लगती है उसके बाद कूलों और घुटनों में घिसाव पाया जाता है, तब ये दर्द उठते बैठते, जिसे इतने कमर में दर्द हो रहा है या घुटनों में चला फिरा नहीं जा रहा, उस तरह का होता है। इसी तरह से रूमेटाइड अर्थराइटिस है, जिसमें सुबह उठते ही हाथों में अकड़न सी महसूस होती है और 30 मिनट तक मुट्ठी खुलने ना खुलने जैसी दिक्कत भी महसूस हो सकती है। इसी तरह से गाउट भी एक गठिया का प्रकार है, जिसमें यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो पैर के अंगूठे में असहनीय दर्द होता है।
0: बिल्कुल, और इसी तरह से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये युवा में सुबह कमर में जकड़न जैसी समस्या इसमें आती है।
1: तो बिल्कुल, ये कभी ना समझे कि ये बढ़ती उम्र में ही होता है, कई बार कम उम्र में भी ये समस्या आपको जकड़ सकती है।
0: बिल्कुल, और जब भी इस तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं आप में या आपके परिवार के किसी सदस्य में, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। जैसे सुबह 30 मिनट से ज्यादा जोड़ों में जकड़न हो, 3 दिन से ज्यादा एक ही जोड़ में सूजन आना है, या बिना चोट के भी दर्द जोड़ों में बना अगर रहता है या बढ़ता जा रहा है, बुखार के साथ जोड़ों में दर्द होना, ये चलने उठने बैठने इन सब में तकलीफ होना, इन सब लक्षण अगर ये हैं तो जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है यानी रूमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। और देर करने से देखिए जोड़ जो हैं वो टेढ़े हो जाते हैं,
1: बिल्कुल, फिर समस्या को समाधान करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए समय रहते बचाव ज़्यादा अच्छा रहता है। और गठिया रोग से बचने के लिए जैसे हमारे संदेश में भी लिखा गया था ना कि 30 मिनट, अगर आप ज्यादा समय ना कर सकें 30 मिनट टहल लीजिए, तैरना, साइकिल चलाना जैसे व्यायाम भी कर सकते हैं अगर आपकी शारीरिक क्षमता है तो। बढ़ते वजन को भी नियंत्रित करना जरूरी है, अगर लगातार आप देखें कि आपका वजन बढ़ रहा है तो वहीं उसे भी नियंत्रण करने की कोशिश करें। धूप में 15 मिनट तक विटामिन डी का सेवन कर सकते हैं, और जो सुबह के उगते सूरज की धूप होती है उसी में विटामिन डी होता है, ऐसा ना समझे कि सारा दिन में से कभी भी आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे विटामिन डी आपको मिलेगा
0: जी।
1: अदरक, हल्दी और या ओमेगा 3 वाली जो भी चीज़ें हैं, जिसमें अखरोट, अलसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, इन्हें अपनी नियमित खुराक में शामिल किया जा सकता है, और अकड़न होने पर थोड़ा सा ना गर्म सिकाई भी की जा सकती है।
0: बिल्कुल, और जोड़ों में दर्द रहता है ना चंचल, तो ठंडे पानी से नहाए इस तरह से हमेशा सलाह दी जाती है, और देर तक एसी में बैठे रहना, क्योंकि आजकल हर घर में ही तो देखिए एयर कंडीशन है ही, तो इसमें भी दर्द बहुत बढ़ जाता है। फिर पालथी मारकर घंटों बैठना या सीढ़ियाँ ज़्यादा ना, ये सब में दर्द बढ़ सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। दर्द होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द का जो कोई भी पेन किलर लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये समस्या को और बढ़ा सकता है।
1: ये सिर्फ जोड़ों के दर्द की बात नहीं है, आपको किसी भी तरह का दर्द होता है और उसमें अगर आपने बिना डॉक्टरी सलाह के पेन किलर लिया है तो उसके कोई साइड इफेक्ट भी आपको आ सकते हैं। इसीलिए जब भी कोई ऐसा दर्द हो, और खासतौर पर गठिया की हम बात कर रहे हैं, अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो चिकित्सकीय सलाह बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और दर्द अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है तो पहले ही आराम, जो पहले क्या करना चाहिए, आराम तो उसका इलाज है ही, ये सोचकर बिल्कुल हिलना डुलना जो है बिल्कुल ना करें, ये उचित नहीं है। और गठिया ला इलाज नहीं है देखिए, पर अनदेखा करना ये भी सही नहीं है। सही समय पर सही जानकारी और व्यायाम से हम अपने रोजमर्रा के जीवन को बिल्कुल सामान्य रख सकते हैं,
1: और इसीलिए दर्द को अपना स्वभाव बिल्कुल मत बनने दीजिए। जोड़ हिलेंगे जीवन तभी मिलेगा, और इस तरह के विश्व स्तर पर जब भी कोई दिवस मनाए जाते हैं तो उनकी एक थीम रखी जाती है। इस बार इस दिन की थीम रखी गई है सही जानकारी बेहतर जीवन।
0: बिल्कुल, और अभी क्या करना चाहिए,
1: एक अंतराल का समय है,
0: चलिए

0: गीत बहुत सुंदर था दीपा, और ऐसे गीत जब बजते हैं ना तो गठिया वटिया सब भूल के ना नाचने कूदने को झूमने को दिल करता
1: बिल्कुल
0: है। और जब रात को गरबा होता है ना तब भी कितना भी दर्द हो रहा हो हाथ पैरों में, लेकिन जब वो थिरकते हुए हम पैर देखते हैं या ऐसा कोई गीत सुनते हैं ना तो मन करता है कि थोड़ा सा चलिए चाहे दो राउंड लेंगे गरबा के हम, लेकिन हो जाए।
1: दिल जब खो जाता है तो किसी सखी को ही बताया जाता है ना।
0: और चलिए हम गठिया दिवस के बाद अब बात करते हैं एक और खास दिवस की, जो है राष्ट्रीय स्वतंत्र विचार दिवस।
1: बिल्कुल,
0: ये भी 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये दिन हमें याद दिलाता है दीपा कि सोचना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन किसी की दी हुई वस्तु नहीं है। ये स्वतंत्र विचार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी मन में आया वो बोल दिया। बड़ों का अपमान करना, हर परंपरा को भला बुरा कहना, इसे विचारों की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता।
1: जी, स्वतंत्र विचार का मतलब ये है चंचल कि किसी भी बात को आंख बंद करके ना मानना, सवाल पूछने की हिम्मत बिल्कुल रखना चाहिए। ऐसा क्यों, ये हम पूछ सकते हैं अपने बुद्धि, अपने अनुभव और सबूतों के आधार पर अपनी राय बनाना और दूसरों को भी अपनी राय बनाने की जो है जब बना उसका सम्मान करना। अगर किसी की राय कुछ और है, हमारे सोच से अलग है, तो उसका सम्मान बिल्कुल करना।
0: आज हमारे पास जानकारी तो बहुत है लेकिन सोच है वो बहुत कम है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी सूचना जो हमें मिलती है हम उनको ही सच मान लेते हैं और भीड़ का हिस्सा मानकर हम भी वही करने लगते हैं जो सारे लोग कर रहे होते हैं। और कई बार हमें ये भी डर लगता है कि इससे अलग सोचा तो लोग क्या कहेंगे।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है, और इसलिए सुनो सबकी, करो अपने विवेक की, मानो वही जो बुद्धि को ठीक लगे। बुजुर्गों ने कहा है, सुनिए सबकी, करिए मन की। पर मन का मतलब जिद नहीं, विवेक है। स्वतंत्र विचार विद्रोही नहीं, ये जिम्मेदारी है, खुद के दिमाग का इस्तेमाल करने की हमारी जिम्मेदारी।
0: बिल्कुल सही कहा, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि बातों के साथ साथ गीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए।
1: चलिए

0: चंचल बोलिए। देखो ऐसा लगता है ना कि भाई छोटी छोटी हम वो किस्सा कहानी जो पड़ी है बूंद बूंद से जो घड़ा घड़ा जो भरता है
1: जी।
0: बस ठीक उसी तरह हमारी छोटी छोटी आदतें ही जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाती
1: हैं। सही कहा। हम सब चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहे, घर व्यवस्थित रहे, रिश्तों में मिठास बनी रहे, जीवन में खुशहाली आए, लेकिन इसके लिए हमेशा बदलाव करने की जरूरत नहीं होती है। छोटी सी शुरुआत भी बहुत बड़े परिणाम दे सकती है ना दीपा?
0: बिल्कुल सही कहा। तो देखो चलिए जान ही लेते हैं आपकी जिंदगी, ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसमें कौन से छोटे छोटे बदलाव हम कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले शुरुआत होती है अपनी सुबह से। अच्छी आदतों से हमें करना चाहिए, उठते ही मोबाइल देखने के ये जो आदत है उसके बदले में थोड़ा सा टहल लें, घर के अंदर ही ताज़ी हवा ले लें या हल्का सा बिल्कुल स्ट्रेचिंग वाली जो एक्सरसाइज होती है ना वो कर लें। और छोटी सी आदत ये देखो हमें दिन भर ऊर्जावान रहने में मदद कर सकती है।
1: इसके अलावा एक छोटा सा दूसरा बदलाव हम ये भी कर सकते हैं कि अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव ले आएँ, पर्याप्त रूप से पानी पिएं, फल सब्जियाँ खाएँ, जंक फूड का सेवन थोड़ा सा कम कर दें। अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए ज़रूरी ये नहीं कि हम सब कुछ एकदम से बदल दें, लेकिन छोटी छोटी सी आदतों से भी हम अपना सकते हैं। और मौसम में जो फल सब्जियां आते हैं उनको अपने आहार में ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और सही समय का हमें समय का जो है सही इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर कभी कभी होता है ना बेवजह समय बिताने लगते हैं, हम पता ही नहीं चलता कितना वक्त निकल जाता है। इसके बदले में हम कुछ समय किताबें पढ़ने में लगाना चाहिए कुछ समय को, और नई चीज़ें सीखने का या अपने शौक पूरे करने में भी हम व्यतीत कर सकते हैं अपना समय। और रोज़ के 15 मिनट भी धीरे धीरे अगर कुछ सीखा तो समझ लीजिए सच में बहुत कुछ सीखा।
1: एक छोटा सा संदेश इसके बारे में बड़ा अच्छा आया है कि

0: छोटी आदतों में बदलाव करने से समय के साथ जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक परिणाम आते हैं। जब आप रोजाना खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत छोटी सी करते हैं तो बहुत महीनों या सालों में वो बदलाव बहुत बड़ा रूप ले लेता है। जैसे कभी कभी छोटी सी बचत बहुत बड़ी बचत बन जाती है, आपका अर्थ मजबूत होता है। सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान या मेडिटेशन, हल्की सैर, छोटी छोटी ये आदतें हैं जो मानसिक शांति, सकारात्मक मानसिकता और बेहतर समय प्रबंधन लाती हैं, और ये छोटी सी जो बातें हैं वो जीवन में बहुत बड़ी खुशियां ले आती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, घर को भी साफ सुथरा रखने के लिए रोज केवल 10-15 मिनट अगर हम निकाल लें तो सच में देखो जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित रहेंगी। हर दिन ऐसा नहीं है कि लंबी चौड़ी, आज हम बोलते हैं ना कि संडे है अब आज हम सफाई करेंगे, अगर हर रोज भी थोड़ा थोड़ा समय निकाला तो घर आपका व्यवस्थित रहेगा।
0: एक छोटा सा संदेश है लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात लिखी कि रोज व्यायाम करना, सैर करना कुछ देर भी अगर आप करते हैं, रोज नहीं हो पाता तो समय के अंतराल पर करिए, लेकिन इससे पता लगता है कि धीरे धीरे शरीर जो है वो स्वस्थ होता जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा, और आर्थिक स्थिति को भी हम बेहतर बना सकते हैं छोटी छोटी आदतों से, जैसे गैर जरूरी खर्चों से बचें और खरीदारी से पहले सोच लें कि क्या सच में वो चीज़ हमें ज़रूरत है उसकी, क्योंकि फट से ऐसे ही ऑनलाइन ये जो क्लिक कर देते हैं हम बटन, उसके पहले ज़रा सा उंगली हटा लीजिए और सोच लीजिए, और धीरे धीरे यही छोटी बचत आपकी बड़ी बचत में तब्दील हो सकती है।
0: ऐसे ही एक संदेश कहता है कि ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे कदम, जैसे मीठा बोलना, समय की कद्र करना, दूसरों की मदद करना, ये भी हमारे जीवन को खूबसूरत बना देती हैं। बस छोटी सी शुरुआत है तो बड़ा बदलाव भी एक दिन ज़रूर हो जाएगा।
1: बिल्कुल, हम फिर आ जाते हैं अब एक और ज़रूरी आदत पर, सकारात्मक सोच की। समस्याओं से घबराने के बजाय उनका समाधान खोजने की हमें कोशिश करना चाहिए चंचल, और जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों का उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त नहीं करते, कम करते हैं जरा। छोटी सी ही बात क्यों ना सही कि मेरा भरा पूरा परिवार है, सब लोग मेरे साथ हैं, हम इसके लिए भी अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक ही दिन में सारी आदतें देखिए बदलने वाली नहीं है, इसकी कोशिश भी हमें करनी नहीं चाहिए। बस शुरुआत एक या दो छोटी अच्छी छोटी छोटी आदतों से करिए, नियमित रूप से उसे अपना कर देखिए तो सही, आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे।
0: एक छोटी सी आदत हमारी भी है कि हम बीच में गाने सुना देते हैं, वो हमें रोकनी नहीं।
1: ये तो बहुत अच्छी आदत है।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: भाई हम बहुत बोल रहे हैं, हम कोई भी काम करें चाहे वो बोलने का हो या कोई शारीरिक श्रम हो, ऊर्जा कैसे मिलती है, हमें खाने से ऊर्जा मिलती है।
5: बिल्कुल सही
4: तो
5: कहा।
4: मेरे कहने का इशारा आप समझ गए कि अब कुछ खान पान की बात भी होनी चाहिए ना?
5: और हमारे यहाँ तो इतने विभिन्न प्रकार के देखो व्यंजन होते हैं, हम हर प्रदेश के व्यंजन को लाने की कोशिश कर रहे हैं और कितने तरह तरह के व्यंजन और रेसिपीज हमने सीखी भी है। आज छत्तीसगढ़ की हम सीख रहे हैं अंगाकर रोटी। ये एक पारंपरिक वहाँ के व्यंजन, प्रसिद्ध और पारंपरिक व्यंजन है। इसे सीधे आग के अंगारों पर पत्तों में लपेटकर पकाया जाता है, इसलिए इसे अंगाकर कहा जाता है। और इसे पान रोटी या पन पूर्वा रोटी भी कहते हैं, क्योंकि ये पत्तों में लपेटी जाती है। लेना क्या है इसमें, पका हुआ चावल लेना है या बचा हुआ चावल भी आप ले सकते हैं। एक कटोरी चावल का आटा, एक कटोरी नमक अपने हिसाब से ले लीजिए, और केले के पत्ते या पलाश के आपको अगर मिल जाए तो वो वाले पत्ते, गोबर के उपले या लकड़ी के अंगारे अगर हो सके तो। बनाना कैसे, सबसे पहले पके हुए चावल को अच्छी तरह मसल ले, इसमें चावल का आटा और नमक मिलाकर नरम आटा गूंद ले। अब जो पत्ते आपने लिए हैं पलाश के या केले के पत्ते, उनको आपस में रखना है, आटे की मोटी लोई बनाकर पत्ते के इसके ऊपर रखना है और ऊपर से एक और पत्ता ढकना है। अब जो तैयार पत्ते वाली रोटी को जलते हुए कंडे या कोयले के अंगारे पर रखना है और ऊपर से भी आपको गर्म अंगारे डाल देना है। ये नहीं है तो फिर अब आप घर पे जो तवा है उसके ऊपर कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो 15-20 मिनट तक पकने दीजिए और पत्तों की देखिए सौंधी सौंधी खुशबू रोटी में आ जाती है। पत्ते हटाकर गर्मा गर्म अंगाकर रोटी को टमाटर की पतली चटनी या घी के साथ परोसा जाता है वहाँ पर पारंपरिक रूप से।
4: बिल्कुल, ऐसे नए व्यंजन देखते हैं तो उनको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। और अब हम सुन लेते हैं गीत,
5: चलिए।

0: चंचल, हमसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा, फरा की जो व्यंजन विधि जल्दी से बता दो।
1: तो भाई देखिए, हमारे श्रोताओं ने इसकी व्यंजन विधि लिखकर भेजी है और वो ये भी बता रहे हैं कि फरा उनके यहाँ करवा चौथ पर बनाया जाता है, तो करवा चौथ भी आने वाली है, थोड़ा सा ही इंतजार रह गया। लेकिन आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि फरा तो जब भी मन करता है ना तभी ये बना लिया जाता है। इसमें के लिए चावल के आटे को सान कर उसकी लोई में चने की पिसी हुई दाल में नमक, मिर्ची, अदरक, ये जो चीज़ें हैं इनको बारीक काट लिया जाता है और इनको मिलाकर भरकर उबलते पानी में डालते हैं। कुछ ही देर में फरे हल्के होकर ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं और थोड़े से कड़े हो जाते हैं, इनके जो ऊपर का आटे का कवर है वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है। और फिर पानी से निकाल कर छोटे टुकड़ों में इन्हें काट कर हींग और जीरे से छौंका लगा लिया जाता है। फिर हरे धनिया की चटनी के साथ इनको खाया जाता है कि बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। तो फरा जो है वो कई प्रांतों में बनाया जाता है और हर प्रांत में बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है। चावल के आटे के साथ बहुत सारे लोग इसमें आटे के साथ भी बनाते हैं और जो ताज़ा चने की दाल को पीसकर बनाई जाती है, जो मसालों का इसमें प्रोपोर्शन है वो भी थोड़ा बहुत बदल जाता है। कुछ इसमें पीसा हुआ लहसुन अदरक भी डाल देते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च आपको ज़रूरत के अनुसार अगर जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से डालिए या ना डालिए, तो ये बदलाव अपने हिसाब से किए जा सकते
0: हैं।
1: और फरा को कहीं कहीं मुठिया भी
0: कहा जाता है। अच्छा, एक संदेश और छोटा सा है कि हर रोज एक गुल्लक में कुछ रुपए जमा करते हैं तो एक अंतराल पर वही छोटी छोटी बचत से कितना पैसा अनजाने में जमा हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता।
1: बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे गाने जमा हो जाते हैं, लेकिन ये जो सुन रहे हैं ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: घड़ी की सुइयां अभी हमें वक्त नहीं दे रही हैं कि हम और बातें करें, तो इजाजत ले लेते हैं सभी।
1: बिल्कुल,
0: चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।